आजा सोनी होर मेरी ओर आजा तेनू तका जबे मेरा लौंग गवाचा नी सोनी बई तू भी रखी निगाह सोना सोना हर नक्श तेरा तिखा।